0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: ਆਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਯਾ ਭਾਰਤੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्रशासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था।

0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत
2: जेकर तुसी लोकां नूं परखदे ही रहोगे तां उनां नाल प्यार करन लई तुहाडे कोल समां ही नहीं बचेगा।
1: आओ हुण सर्वण करते हैं भक्ति संगीत प्रोग्राम आराधना।

उस परमात्मा दे द्वार मन दी शांति है, सुख है, आसरा है। मन दे द्वार खोल, आओ उसका एहसास करिए ते दिन दी सोहनी शुरुआत करिए।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटि तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आङ्ग लाइङ्ग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यान्मार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट महासागरादि नीतिषु म्यान्मार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आङ्ग लाइङ्ग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यान्मार देशः भारतस्य दक्षिणपूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98 मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I'm confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉ संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासन

0: वर्षस्य द्वादश वर्षाणां सेवायाः विषये संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दे हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते म्यांमार दे राष्ट्रपति ने नवी दिल्ली विच मुलाकात की। दोवां नेतावां ने दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन बारे चर्चा की। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले तो देशव्यापी खेत बचाओ मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने किसानों नूं रसायणिक खादों की वरतों नूं सीमित करन की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की मुड़ प्रीख्या नूं मौजूदा पेन ते पेपर फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर आधारित प्रीख्या वजो करवाउण की मांग करन वाली एक पटीशन नूं खारिज कर दिता है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल ते डीजल का ढुकमा भंडार उपलब्ध है। मई महीने च वस्तु ते सेवा टैक्स GST का कुल संग्रह 3.2% वध के 1,94,000 करोड़ रुपए तो वध हो गया है। पंजाब मंत्रिमंडल वालों आदियां पंजाब विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र सूबे की चोण मशीनरी नूं मजबूत करन लई चोण विभाग दे सेवा नियमां विच सोध नूं मंजूरी। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव वालों सारिया फील्ड यूनिटा सुरक्षित माहौल यकीनी बनाने कदम उठाने निर्देश। पंजाब विधानसभा जिसन पहली मई 2026 अणमिथे समय लिए मुलतवी कर दिता गया 31 मई 2026 पंजाब के राज्यपाल के एक हुक्म राही रस्मी तौर पर उठा दिता गया है। तो पंजाब सरकार वालों जलंधर के पुलिस कमिश्नर अमृतसर के फरीदकोट के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत 11 IPS अधिकारियों के तबादले ते नियुक्तियां। जलंधर के पुलिस कमिश्नर तनप्रीत कौर की थान लुधियाना पुलिस रेंज के DIG सतेंद्र सिंह जलंधर पुलिस कमिश्नर की कमान संभालणगे। ये सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सोहणी सवेर।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: तो सी सुन रहे सी प्रोग्राम सोनी सवेर मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 8 बज रहे हैं, सुनते हैं समाचार प्रभात 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़ से 8:30 बजे पंजाबी खबर।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब

0: पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12

0: वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा।

0: गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: विघ्न सप्लाई जारी है। इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ते हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड दे सारे परचून आउटलेट आम वांग काम कर रहे ने ते रसोई गैस की सप्लाई भी आम वांग है। तेल कंपनियां ने खपतकारा नु किसी भी अफवाह जा बिना पुष्टि वाली खबरों तो बचण की अपील की थी है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਤੋਂ 7:40 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ 7:10 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के उपबंधा तहत पंजाब के रामनगर विखे स्थित ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट नाल संबंधित 14 अचल जायदादों नूं अस्थाई तौर पर जब्त कर लिया है। एजेंसी ने कहा है कि इसने कंपनियों से संबंधित संस्थावां वालों चलाई जा रही एक समूहक निवेश योजना नाल संबंधित वड्डे पद्धर ते निवेश धोखाधड़ी की चल रही जांच के संबंध में जायदादों नूं जब्त किया है। जब्त कीतियां गईयां 14 जायदादां दी पछाण निवेशक फंडां तों प्राप्त कीती गई वजों कीती गई है, जो कि अपराध दी कमाई है। इस जब्ती दे नाल एजेंसी ने हुण तक 28,626 करोड़ रुपए की चल अते अचल संपत्तियां नूं जब्त कर लिया, जिस विच भारत अते विदेशां विच स्थित जायदादां शामिल ने। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो वालों दर्ज FIR दे आधार ते जांच शुरू की सी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के चोटी के कार्यकारी अमिताव झुंझुनवाला एक बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा कि वह रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरैक्टर सन और कारपोरेट माली बैंकिंग और फंडा की वरतों वर्गे महत्वपूर्ण कार्यों के मामलों कंट्रोल कर रहे सन। इल्जाम है कि कर्जे के फंडा की दुरवरतों कारण बैंकों गलत नुकसान होया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी उत्ते निर्माणधीन पुल ते सैगमेंट स्पैन दे टह जाण दी जांच लई दो वक वक उच्च पद्धरी जांच कमेटियां दा गठन कीता है। जिला प्रशासन ते उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन अधीन कमेटियां ने 6 जाना लैण वाली घटना दी व्यापक जांच शुरू कर दित्ती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यूनैसको विश्व विरासती थां फुलां दी वादी सैलानियों लई खोल दित्ती गई है। जंगलात विभाग ने सैलानियों नूं वादी दी अमीर जैव विविधता अते बूटियां दीआं दुर्लभ प्रजातियां दी सांभ संभाल विच सहयोग करन दी अपील कीती है। मौजूदा समय वादी विच फुल्लां ते दुर्लभ बूटियां दीआं 300 तों वध किस्मां मौजूद ने। जंगलात रेंज अधिकारी चेतना कंदपाल ने कहा कि वादी 31 अक्तूबर तक सैलानियों लई खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: 2026 दीआं एशियाई खेडां तों पहलां भाई किश्ती चालकां नूं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम विकास समूह विच शामिल कीता गया है। चुने गए समूह हुण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री किश्ती मुकाबलियां लई तैयारी करनगे। जापान विच मर्दां दे अंडर 18 हॉकी एशिया कप विच कल भारतीय टीम ने पूल ए दे मुकाबले विच कोरिया नूं 4-1 नाल हरा दिता। तीजे अते 36वें मिंट विच कप्तान केतन कुशवाहा दे दो शानदार गोलां दी बदौलत भारतीय टीम पहले 5 मिंटां विच ही अगे निकल गई। वरिंदर सिंह ने 5वें मिंट विच अते शाहरुख अली ने 54वें मिंट विच गोल करके टीम दी जित यकीनी बनाई। कोरिया लई इक्को इक गोल कप्तान युन जाई योक ने 21वें मिंट विच कीता। भारत दा अगला मुकाबला कल चीनी ताइपेई नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑ लाइन ने भरोसा दिता है कि म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों खिलाफ अपनी धरती की वरतों नहीं होने देगा। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ते अमरीका विचकार व्यापार समझौते दे पहले पड़ा दे ज्यादातर बिंदुआं ते सहमति बन गई है। ईडी ने पंजाब के रामनगर च स्थित ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट नाल संबंधित 14 अचल जायदादों नूं अस्थाई तौर ते जब्त कीता है। उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित यूनैसको विश्व विरासती थां फुलां दी वादी सैलानियों लई खोल दित्ती गई है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितने ले आवां?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
2: आप पैसे गवाओगे। आरबीआई कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम महक पंजाब दी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां।

आशा भोसले ते साथियों दी आवाज़ में तुसी एक गीत सुन रहे सी फिल्म चोर मचाए शोर चो। आज दे फिल्म संगीत प्रोग्राम जो चोर मचाए शोर फिल्म दे गीत तुसी सुनोगे जो 1974 दे विच रिलीज़ हुई सी, संगीत रविंदर जैन दा सी। ते इस फिल्म दी जेकर सफलता दी गल करिए तां ए फिल्म भी सफल सी ते इसे गीत भी बहुत सुपरहिट रहे सन। हुण प्रोग्राम जैसे फिल्म का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी ते लता मंगेशकर हुणां दी आवाज़ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

आशा भोसले उन्हां दी आवाज़ भी तुसीं गीत सुन रहे सी। इस फिल्म दे गीत आशा भोसले ने गाए सन किशोर कुमार ते मुहम्मद रफ़ी हुणां दे नाल। मुमताज़ हुणां दे करियर दी आखिरी दौर दियां वड्डियां हिट फिल्मां विच्चों इह फिल्म शामिल सी, क्योंकि कुछ समय बाद ही उन्हां ने फिल्मां तों दूरी बना ली सी। ते इसे फिल्म चों हुण प्रोग्राम दा जो अगला गीत तुहानूं सुनाउण जा रहे हां वो सैड सोंग है, जो कि फिल्म दा बहुत ही एक मकबूल गीत भी होया सी। ते सैड सोंग से जेकर गल कीती जावे ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੀਤ ਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरल

0: और परिवार के संस्कार हों, वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
0: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें, ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
0: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन तथ्य कुछ और है
0: जी।
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों

0: और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी,
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
0: जी
1: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच

0: लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।

0: तुम सिद्ध ना कर सको।
1: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
2: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
1: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
2: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
4: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
3: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
4: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
3: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
5: चलो
6: अरे
7: भेड़िया,
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
8: चलो चलो चलो
9: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
10: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक

0: एसिड जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर दो साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है, और अच्छी बात यह है इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया, और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके

0: वाली भेड़ें थीं। दो सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
1: अरे आजा आजा आजा हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
2: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
2: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा
2: अच्छा,
5: बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए।

0: पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था। अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ताकि अगले कॉलर दोस्त इतने के आए नहीं। हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैम,
0: नमस्कार जी, स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं ये सुरेश सिंह गल नाल मेरा पोता जी हर सिंह गल को रूबरू तो बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, ठीक है जी, की हाल चाल ने तुहाडे पोते
1: हाँ
0: दे?
1: बहुत बहुत बढ़िया कुछ बताई।
0: ठीक है जी, गाना कहड़ा सुनोगे फिर तुसी
1: हाँ
0: अज?
1: गाना ये अपन सुमन ब्रांड वर्जी कल अपन विछोड़ा दे गए जी उन्होंने
0: जी
1: अपनी श्रद्धांजलि आई।
0: बिल्कुल,
1: हाँ जी अनजाना फिल्म दे रफी साहब था जी, जान जान चली जाए तो जी ना जाए।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है।
1: हाँ जी हाँ जी सुमन कुमार नाल ने गाया। हाँ जी
0: बिल्कुल जी, सुमन कल्याणपुर होना ने बहुत ही यादगार गीत गाए ने, बहुत
1: गीत गाए हैं
0: खूबसूरत
1: बहुत
0: आवाज़
1: सोहने
0: से
1: गीत
0: उन्हों
1: गाए
0: दी,
1: नाल बहुत सोहने गीत गाए आई।
0: बहुत सोहने गीत गाए ने, बड़े सुपरहिट रहे ने,
1: हाँ जी हाँ
0: ते
1: जी
0: उन्हां विचों तुसी बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश की है, ते सुनदे हां जी। कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।

0: प्रोग्राम हेलो फरमाइश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ,
1: हेलो जी, नमस्कार जी,
0: नमस्कार
1: पूनम मैम
0: जी,
1: जी। जी
0: स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो?
1: मैं विष्णु प्रसाद बोल रहा हूँ जी, अंतर विद्यालय मखु गेट फिरोजपुर शहर तो जी।
0: विष्णु जी स्वागत है जी प्रोग्राम की। हाल चाल ने?
1: हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाल चाल बिल्कुल गुरु महाराज की कृपा नाल, परमात्मा की कृपा नाल बहुत बढ़िया चल रहे ने जी।
0: चलो जी, बहुत वधिया गल है। फिर तो गाना कड़ा सुनोगे तुसी अज?
1: गाना जी राजा और रंक मूवी का सॉन्ग है जी, फिरके वाली तो कल फिर आना नहीं फिर जाना अपनी जुबान से।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई। थोड़ी पसंद सुनने मोहम्मद रफी हुणां दी आवाज़ च गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-23-11-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026।

0: हेलो
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से।
0: रानू जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं ठीक हूँ, बस आपका प्रोग्राम सुन तो नहीं रही हूँ, बट कॉल ही लगा रही थी
0: अच्छा,
1: क्योंकि ना मेरे यहाँ कल हवा आनी चली ना, तो उसी की वजह से डीटीएच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है।
0: तो आप
1: तो
0: मोबाइल ऐप से नहीं सुन
1: हाँ मैं
0: सकते?
1: मोबाइल ऐप पर सुनती हूँ, बट मैं थोड़ा सा बिजी थी तो ट्राई कर रही थी ना
0: अच्छा,
1: इसलिए
0: ट्राई कर रहे थे। ठीक है ठीक है,
1: हाँ तो
0: तो जब आप
1: मुझे
0: गाना
1: गाना
0: सुनेंगे अपनी पसंद का, तब तो फिर सुन
1: अब
0: सकते हैं उसपे।
1: सुनूंगी तो मुझे गाना सुना है, मूवी का नाम है हम तुम,
0: जी
1: और गाने के बोले लड़की।

0: कि क्यों ना जाने लड़कों सी नहीं होती, तो तुले कर दीजिए।
1: बिल्कुल, एक लड़की और लड़की की नोक झोंक और सवाल, बहुत कुछ है इसमें।
0: जी,
1: ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
0: तो शुक्रिया मैम।

0: ना भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के है, अभी किसी।
3: सो हम तुम फिल्म दे इसकी दिनाल ही हूँ, आज दा ए लाइफ हूँ इन

0: पकड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया। लड़ीवार नाटक होया।

0: की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180

0: इनकी अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज फाजिलगा, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज कसौली, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर, अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुहाडा दोस्त गौरव जुड़ गया तुहाडे नाल। शाम 5 बजे तक तुसी रहोगे गौरव दे नाल आकाशवाणी जलंधर ते। और हुण समा हो गया तुहाडे सारयां दे अपने फरमाइशी गीतां दे प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दा। ते आओ फिर शुरू करदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

इस नंबर पर मैसेज करने हैं और साढ़े नाल जुड़ना है। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत कर जा रहे हैं और शुरुआत दे विच जिन्हां जिन्हां दे मैसेज आए ने वो मैसेज पढ़न जा रहे हैं। सब तो पहले जिहड़ा मैसेज आया है जी वो है साढ़े सामने बाबा साहेब कनगर साखरबाई परमेश्वर श्रावणी ते कंगनकर सारा दा सारा परिवार ये जुड़िया होया है साढ़े नाल मुंठी पैठन महाराष्ट्र तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जदों दूजिया स्टेटा तो खास करके दूजे सूबे तो जिथे पंजाबी नहीं बोली जाती उतों सानू मैसेज आते हैं ना तो सानू बहुत ही चंगा लगता है। पिंड चंदबाजा फरीदकोट अंग्रेज सिंह गेजा गुरमीत कौर जगप्रीत सिंह मनप्रीत कौर करमजीत सिंह ये सारे ही साढ़े नाल जुड़े ने और इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये पंजाब तो ही साढ़े नाल जुड़े ने। इदा की गल नहीं कि पंजाब तो मैसेज आए तो सानू चंगा नहीं लगता, हर जगह तो जो मैसेज आता ना बहुत चंगा लगता है। टैगोर गार्डन नवी दिल्ली तो रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीति छाबड़ा तो उन्हों का सारा का सारा परिवार जोड़ा है जुड़ गया। आदर्श नगर बठिंडा तो इंजीनियर अशोक ग्रोवर प्रवीन विक्रमजीत अनमोल सिंह पवनीत ग्रोवर इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रैम्पटन कैनेडा तो लो जी हुण वलैतों भी मैसेज जोड़े ने आने शुरू हो गए ने। निखिल भाटिया नितिन नीति और महरीन भाटिया और कहिंदे ने रिस्पैक्टेड सर नमस्कार प्लीज़ प्ले एनी सोंग कोई भी जिहड़ा गीत है वह जरूर सुना दिओ। लो जी गीत जरूर सुनावांगे। पिंड शाहपुर मैथपुर तो बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पहलजोत सिंह और उन्हां तों बाद अनायत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर और उन्हां दा सारा परिवार जुड़ गया है और इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश है कि जिहड़ा गीत है ना वह सानू सुना दिओ सतिंदर सरताज होरां दा। ते लो जी फिर सतिंदर सरताज जिहड़े ने वो हाज़री लवाण आ रहे ने प्रोग्राम की शुरुआत दे विच और प्रोग्राम की शुरुआत दे विच ही जदों बहुत सुरीले सुरीले और उच्चे पाए दे जिहड़े गायक वो जुड़दे आ ना तां उदों प्रोग्राम होर वधिया हो जांदा है। ते आओ फिर शुरू करिए अज का ये प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी सतिंदर सरताज दे गाए इस गीत के नाल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

प्रोग्राम चल रहा है तमक जलंधर पैंदी, और बहुत सारे मैसेज पाए ने। आओ फटाफट मैसेज पढ़ दिंदे हाँ। जिन्हां जिन्हां ने भी मैसेज किए हुए ने पंजाबी गीतां दे, उन्होंने मैसेज पढ़ांगा। हरजीत कैंथ मौजी कलोनी लुधियाने तो साढ़े नाल जुड़ गए ने, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। संजय ढिंगिया, नवन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, ये बागपत उत्तर प्रदेश तो साढ़े नाल जुड़े ने। खेल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा जुड़ गए हैं। शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, ये भी जुड़ गए ने। इन्हां नूं भी बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज दे लई। अगले मैसेज दे विच सानू कहिंदे ने कि गीत जिहड़ा है जिहड़ा मर्जी चला देना, पर साडा जिहड़ा ये फरमाइशी मैसेज है ये जरूर पढ़ना है। सुरेश, वर्षा, श्रद्धा ते मानसी ये जुड़ गए ने साई की शिरडी तो। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने लई, इन्नी दूरों महाराष्ट्र साढ़े नाल जुड़े हुए ने। सत श्री अकाल कहने वाले ने सानू सरदार मलकीत सिंह और उन्होंने नाल उन्होंने बहुत सारे साथी जुड़े ने, बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज दे लई। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ तो, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और सारा का सारा खुराना परिवार जुड़ गया जी। मक्खू तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज, इन्होंने भी अपनी सत श्री अकाल भेजी है।

0: ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀ ਆਰ ਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून

0: तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: बहुत ही बना सकते हैं रचनात्मक, ते बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल पूनम, जे बच्चों नू इस रस्ते ते पाता जाए ना, जिवें तुसी दस्या कि कोई नवी चीज़ सिखानी है, कोई खेल ही सिखा दो या उन्हां दे शौक दी कोई चीज़ सिखा दो, ते बच्चे 2-4 घंटे लई बाहर जांदे ने, ओह चीज़ सीखदे ने और आसपास होर कई लोगों नू मिलदे ने, उहदे नाल उन्हां दी कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुंदा है ते नवी नवी चीज़ां भी ओह सीख के आंदे ने, इहदा बहुत फायदा हो सकदा है।
0: देखो गर्मियों दी छुट्टियां दा जदों जिक्र आउंदा ना, साडे ज़हन दे विच साडियां यादां भी ताज़ियां हो जांदियां ने।
1: बिल्कुल
0: जदों स्कूल दे विच गर्मी दी छुट्टियां हुंदियां सी तां मोबाइल तां नहीं हुंदा सी, मोबाइल इंटरनेट ते एक जो घर दे विच बिजली हुंदी सी ओह वी कई वारी गायब हुंदी सी,
1: बिल्कुल
0: ते खुले कमरियां दे विच खुली हवा ताज़ी जदों मिलदी सी तां नींद भी आ जांदी सी, होमवर्क भी कर लेंदे सी, पहले मुका लेंदे सी। ते जिन्हां ने नानी दे घर मासी दे घर जाना हुंदा सी ओह होमवर्क पहला मुका के बेले हो जांदे सन, ते कईयां दा काम तां लास्ट तक भी नहीं मुकदा सी।
1: बिल्कुल, और वो पेंडिंग भी चला जाता सी। ते
0: बिल्कुल
1: अच्छा, काम खत्म करन दे विच ते कईयां दी हेल्प चाहिदी हुंदी है, मम्मी मेरे नाल बैठे तां आपां कम करांगे, या कई तरह दे ऐसे बहाने भी बहुत सारे बनांदे ने बच्चे, बट इहदे नाल नाल जिन्हां ने करना है उन्हां ने फटाफट काम खत्म भी कर लेना ते छुट्टियां इंजॉय करन, किसे किधरे इधर उधर छुट्टियां मनान भी चले जाना हुंदा है।
0: माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों को कुछ रचनात्मक काम करवाण, तो ना
1: बिल्कुल
0: सिर्फ करवाण बल्कि खुद भी उन्होंने नाल मिल के करन। क्योंकि जो असं बच्चों सिर्फ इंस्ट्रक्शनस ही देंदे रहने ना कि तू ये कर ला, वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों कर रहा, तो बच्चे नहीं मानते। बच्चे उदों ज़्यादा मानते नहीं, उदों ज़्यादा सीखते नहीं जो उन्होंने सामने खुद तुम उदाहरण बन के पेश आओ। सो गल कहण दी ये है कि तुम भी नाल मिल के उन्होंने नाल गार्डनिंग करो, पेंटिंग करो, कुकिंग करो, कुछ भी करो, पर इस तरह नहीं होना चाहिए कि असं बच्चों को मोबाइल देखने तो रोकीए तो खुद उन्होंने सामने मोबाइल चलाइए।
1: ये बहुत वड्डी गल कीती तुसी, सच्ची गल तो एवे कि माँ बाप ना बच्चा तंग ना करन, चल मोबाइल लैके बैठे रहन, ते उन्हां नूं मोबाइल दे देंदे ने और कई कई घंटे लैके बैठे रहिंदे ने, उन्हां नूं परवाह भी नहीं हुंदी ना, उन्हां ने अपने खाण दा ध्यान करना है, उन्हां नूं कोई लेना देना नहीं, रोटी भी ना मिले मोबाइल मिल जाए ते उहदे चों खुश रहिंदे ने। ते इस चीज़ दी आदत नूं छुड़ाउण दा ये सब तो वधिया टाइम हुंदा है कि बच्चिआं नूं फिजिकल वर्क कराया जाए, खेलन लैके जाया जाए और शाम नूं उन्हां नूं वॉक कराई जाए और कई नवें चीजा सिखाइया जान, जिवें तुसी पहले ही कह रहे हो।
0: जी देखो बहुत सारे बच्चे हो जे हुंदे ने जो ना समर वेकेशन दे विच बहुत कुछ नवा सीख लैंदे ने,
1: बिल्कुल
0: कोई नवा आर्ट सीखते ने, कोई कला सीख लैंदे ने, कुछ और उन्हां दे शौक पैदा हुंदे ने, कुछ घूमण फिरन दा मौका मिलदा, कुछ देखण दा समझण दा मौका मिलदा है। ते परिवार दे विच रह के ना एक बहुत अच्छा उन्हां दे नाल असीं कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, गलबात दा जिहड़ा तरीका है होर सुधार सकते हैं, उन्हां नाल बह के उन्हां दी सुन भी सकते हैं ते उन्हां दी अपनी सुना भी सकते हैं।
1: बिल्कुल। ते एक होर खास गल हुंदी है कि उन्हां नूं अपने वड्डिया नाल, दादे दादी नाल, नाने नानी नाल टाइम दिता जाए, वो टाइम बितान उन्हां नाल, उन्हां तो 100 चीज़ां सीखन ते ए भी दिख सीखन कि वड्डियां दी रिस्पैक्ट किस तरह करनी है, उन्हां तो बहुत अच्छियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो बच्चियां तक पहुँच सकदियां ने।
0: जी ये नाना नानी नू मिलन दा, दादा दादी नू मिलन दा जो चाह है ना बच्चों के विच हमेशा रहिंदा है, रहना भी चाहिदा है,
1: बिल्कुल
0: ता ही साडे रिश्ते जिहड़े ने ओह बचे रहणगे ते बच्चों के विच पुराने संस्कार बचे रहणगे, उन्होंने मिलन दा एक जो इज्जत है सन्मान है चाह है वह बचा रहेगा
1: बिल्कुल
0: ते बच्चों के विच बचपन बचा रहेगा।
1: बिल्कुल
0: ते एक गीत भी अपने सुनने वाले ने सुनाउण जा रहे हैं, कुछ इहो जिही बचपन की मासूमियत की एक गल कर रहा है गीत, आओ फिर सुनने ते उस तो बाद वापस मुड़ते हैं।
1: ठीक।

0: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

0: रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1,200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज थे। आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। और आओ हुण असीं तुहानूं साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा दिंदे चलिए।

जी फौजी वीरों, पहुँच गए ना आपां उस युग दे विच जदों चीज़ां जड़ियां ने वो घट होंदियां सी पर माहौल जड़ा सी वो ज़्यादा वधिया होंदा सी। अज भी माहौल अच्छा है लेकिन उदों दी जड़ी एक रवानगी है, उदों दी जड़ी एक दीवानगी है ना, वो बहुत अलग होंदी सी। सारा सारा दिन गर्मी दे विच बाहर भी रहिए तो गर्मी नहीं लगती सी, ठंड दे विच ठंड घट लगती सी। और वैसे तो सलाम तुहानू ही है फौजी वीरो कि तुसी भी सरहदां दे उपर खड़े होए हो और

0: जी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाए।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

सेहत मंत्रालय ने कहा कि देश में हालां तक इबोला वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। मंत्रालय ने सलाह दी है कि अजय व्यक्ति जो पिछले 21 दिनों में इबोला प्रभावित देशों तो यात्रा करके आए ने ते बुखार सिर दर्द मांसपेशियों में दर्द दस्त जां बिना किसी कारण के खून वगण वर्गे लक्षणों के अनुभव कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को अलग रखना चाहिए है। मंत्रालय ने अजय व्यक्ति को तुरंत स्थानक सेहत अधिकारियों को सूचित करने भी कहा है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 से कॉल करके सूचना ते सहायता हासिल कर सकते हैं। इस दौरान भारत ने इबोला वायरस का मुकाबला करने लिए अफ्रीका 43 टन डॉक्टरी सहायता की दूजी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि

के बराबरी देने। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। डायरेक्टोरेट ने 2.6 किलोग्राम दरामद किया सोना जब्त किया जिसकी कीमत लगभग 4.2 करोड़ रुपए है। अंत में चोणवियां खबर एक बार फिर सुन लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिक्ख्या शक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि यह व्यक्ति को आत्म निर्भर जागरूक से समर्थ बनाती है। गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन और विदेशियों बारे सोध नियम 2026 नोटिफाई किया जिस तहत विदेशियों बारे नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नवे जजों को अहुदे की सहुं चुकाई है। CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं में गलतियों की तस्दीक और पुनर्मूलांकन लिए आज पोर्टल शुरू कर दिया है। तो पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में होगी। इस दे नाल ही खबरों का राष्ट्रीय बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 होएगा। नमस्कार।

रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वक्त की हद में अहम तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक 2025 के जाब्तों के तहत अपील दायर करने के तरीक़ेकार में तब्दीली की गई है। मस्कूरा तरमीम की रूह से भारत पहुंचने के 180 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा। अभी तक 180 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होता था। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजेस को ओहदे का हलफ दिलाया है। जस्टिस शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और सीनियर वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनके तकरूर की इजाज़त दे दी थी। ये तकरूर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज किए जाने के चंद हफ्ते बाद किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के पोर्टल पर आज से कामकाज शुरू हो गया है, जो 6 जून तक जारी रहेगा। ये पोर्टल फराहम की गई जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी में किसी तरह के एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक है। CBSE ने कहा कि यह सहूलत महज उन तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने जांच किए हुए जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल कर ली है। बोर्ड ने यह भी कहा कि हिफाजती वजूहात से आधार के जरिए तस्दीक भी की जाएगी। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो अपने वालिदैन, रिश्तेदारों या सरपरस्तों की आधार तफसीलात फराहम कर सकते हैं। CBSE ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबरों की तस्दीक और दोबारा जाँच के लिए किस तरह दरख्वास्त दी जाए। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस रियासत के सिद्धी ज़िले में एक साल के अंदर अंदर 53 ऐसी माओं की अमवात की खबर पर जारी किया गया है जो जचगी से पहले या बाद में फौत हो गईं। कमीशन ने मीडिया की एक रिपोर्ट पर अजखुद कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर अंदर तफसीलात तलब की है। कमीशन ने कहा कि अगर खबर का ये मवाद सच पर मबनी है तो इससे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का एक तशवीशनाक मामला सामने आता है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता 21 दिन में इबोला से मुतासरा मुल्क का सफ़र किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इसकी इत्तला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मैशटाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, MSMEs, डिजिटल और बुनियादी ढांचों के शोबों में मौक़ों के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर शंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मैशटाइल के अज़म की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अलाक़वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और उनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नज़र रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तगजियाती मुतबादिल पर मुश्तमिल है। म्यांमार के सदर ऊ मिन ऑंग लाइंग भारत के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज बैन अलाक़वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल शोबे के वजीर जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक़वामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने पहला मैच चेम्सफोर्ड में 38 रन से जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच ब्रिस्टल में 26 रन से जीता था। हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर

0: 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के 3rd और 36th मिनट में 2 किए। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात और मगरबी मध्य प्रदेश में और ख्वातीन क्रिकेट में भारत और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। खबरें खत्म हुई।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal benefit.
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी तो तुहाडे नाल जुड़े हुए हाँ और प्रोग्राम एक बार फिर शुरू कर दिया जिहदा नाम है फौजी वीरां लई। तो फौजी वीरों असी गल कर रहे से 90 दे दशक दे उस सुहाने सफ़र दी जिहदे विच बहुत सारे नवे नवे सिंगर और पुराने सिंगरां ने भी अपना जिथे दमखम खाया उत्थे एक अजिहा ना जिहड़ा हमेशा लई साडे ज़हन दे विच आंदा है और उन्होंने गीत तो बहुत उस तो पहले भी गाए सी लेकिन इस गीत दे राही जिहड़ा उन्होंने एक अलग चित्रण कर दिता खास करके इंडिया दा तां वो ना सिर्फ इंडिया दी गल कीती गई बल्कि उन्हां दी अपनी एक शैली एक नवा तरीका नवा अंदाज पूरे विश्व भर दे विच बहुत प्रसिद्ध होया। मैं गल कर रहा अलीशा चनाया होरां दी। जी हाँ, अलीशा चनाया जिन्होंने बहुत सारे और बहुत सुरीले गीत दिते उन्हां दा ये गीत जिहड़ा हजे तक साडे कन्नां दे विच जदों गूंजदा है ना तां मिलिंद सोमंद दी जिहड़ी ओह फिजीक है ओह मॉडल और ओह तरीका साडे दिमाग दे विच आ जांदा है। ये केड़ा गीत है तुसी समझ तां गए होगे पर एक वारी तुहानूं सुनाणा जरूर बनदा है। त्याओ सुनदे आं अलीशा चनाया दा गाया ये गीत।

जी फौजी वीरो, मेड इन इंडिया जिथे महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी की गल की सी, साढ़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया तो मेड इन इंडिया की गल करते हैं। अलीशा चराए होर ने भी अपने तरीके मेड इन इंडिया की गल की है और इंडिया तो सानू माण है, साड़ा अपना देश है और सानू माण है साढ़े फौजी वीर से भी। अगला जो गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं और जिस गायक का यह गीत है ना, उस गायक ने 90 का इरा जड़ा सी बिल्कुल बदल दिता। उन्हां दी सुरीली आवाज़, उन्हां दा सुरीला अंदाज और उन्हां दी मिठी मिठी जुगलबंदी, ये जिहड़ी आवाज़ सी ना, ये हमेशा ही साढ़े दिल दे विच वसदी है और अज भी ये उन्नी ही खूबसूरत और उन्नी ही यंग आवाज़ है। मैं गल कर रहा कुमार सानू होरां दी, या कुमार सानू दा जिहड़ा एरा वह जदों दा शुरू होया हजे तक वो मुकदा ना नहीं लैंदा पिया और जदों तक संगीत रहेगा वह मुकेगा भी नहीं, क्योंकि उन्हां दे गीत जिहड़े ने वह है ही इदां दे ने। ते आओ फिर उन्हां दा एक गाया गीत सुनीए, वह गाया गीत जिहड़ा सदा लई चार्ट बस्टर हो गया और हमेशा ही जदों असी किसी इदां दी नौजवान स्त्री नूं या कुड़ी नूं या अपने प्रेमिका नूं वेखदे आ तां इह गीत बदोबदी जिहड़ा है साडे जुबान ते आ ही जांदा। तां ओह सुणीए फिर इह गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀਯ ਛਾਤਰਵ੍ਰਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀਓ ਕੋ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਭੀ ਵਰਗੋਂ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲੀਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸ਼ੈਕਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਰਜਨ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਿਯਮ 2026 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਏ। ਪੰਜੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਔਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵ ਕੀਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲੇ ਕੇ 5 ਨਵੇਂ ਨਿਆਧੀਸ਼ੋ ਕੋ ਪਦ ਕੀ ਸ਼ਪਥ ਦਿਲਾਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਔਰ ਤਟੀਯ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਆਜ ਆਂਧੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾ ਔਰੰਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੇ ਬੀਚ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਅੰਤਿਮ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਆਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੇ ਟੌਂਟਨ ਮੇਂ ਖੇਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਜਾਗਰੂਕ ਔਰ ਸਕਸ਼ਮ ਬਨਾਤੀ ਹੈ। ਆਜ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਜਨਜਾਤੀਯ ਛਾਤਰਵ੍ਰਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀਓਂ ਕੋ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤਭੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਬ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਭੀ ਵਰਗ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸ਼ੈਕਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰੇ।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं।

0: जिसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान

0: के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले

दो से तीन दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ए जलंधर केंद्र। समा हो गया है लोग गीतां ने साडे प्रोग्राम रंगली धरती का, तो अज इस प्रोग्राम दे विच देवराज ते उन्हां दे साथियों वालों माता दी भेंटा का गुणगान किया जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं प्रोग्राम देवराज ते उन्हां दे साथियों वालों गई माता दी भेंटा दे नाल।

0: जी देवराज ते उन्हां दे साथियों वालों गाई गईयां इस भेंटा दे नाल ही अज दा रंगली धरती प्रोग्राम हुण इत्थे ही खत्म हुंदा। अपने दोस्त गौरव नूं प्रोग्राम नूं खत्म करन दी दिओ इजाजत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा इह जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक दोपहर दे 3 बज गए ने। इस चैनल ते साडी पहली सभा हुण इत्थे ही खत्म हुंदी है। अपनी दूजी सभा लैके 3:58 च तुहाडे सेवा दे विच फिर हाज़र होवांगे। उदों तक लई सानूं दिओ इजाजत। जय हिंद।
1: डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा इह जलंधर केंद्र है। स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक दोपहर दे 3 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दीआं मुख सुरखियां।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिक्ख्या सशक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर जागरूक और समर्थ बनाती है। गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन और विदेशियों बारे सोध नियम 2026 नोटिफाई किया है जिस तहत विदेशियों बारे नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्या कांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नवे जजों को अहुदे की सहुं चुकाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जज अश्विनी कुमार मिश्र को पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का नवा चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। CBSE ने उत्तर पुस्तिकावां च गलतियां दी तस्दीक अते पुनर्मुलांकन लई अज पोर्टल शुरू कर दिता है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऐलान किया है कि पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउण लई पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दीआं प्रीख्यावां दीआं उत्तर पुस्तिकावां हुण ऑनलाइन उपलब्ध होणगीआं। पंजाब सरकार ने साल 2025-26 दे पिड़ाई सीजन दौरान गन्ना किसानां दे 100% बकाए अदा कर दित्ते ने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड HPCL ने निवेश राही सूबे विच अपना दायरा वधाउण दी योजना दा ऐलान किया है। महिला क्रिकेट विच भारत ते इंग्लैंड दरमियान तीजा ते आखिरी 2020 मैच अज राती टोंटन च खेडिया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून तक अहमदाबाद विखे होएगी।

0: दसो की लेना बादशाह।
1: साड़ी जैम्पर सुरखी पाउडर पतिया कज्जल सत जालियां नौ परांदे अठ जुराबा नकली जुल्फा असली सुइयां इक दुपट्टा पतला पतला मोतियां आला सेंट जमेली नौ पालश ते।

0: एलो बाशो टैक्सी भी हाजिर है।
1: मैं का कितने कितने ले जाऊंगे दीप जी।
0: बिल्ला मंदिर सिंह में अंदर शहर जलंधर कला कलंदर मुगल काटे राम तलाई हेठ तलाई उत्तर जाई सब्जी मंडी मोया दी मंडी बिच जमना दे गोते चोते बड़ी जेल कोतवाली थाना गंदा नाला मैका वाला हस्पताल परिवार नियोजन बस।

0: हाय हाय, वापस कदों आओगे सोनियो?
1: एक महीना दो महीने तीन महीने चिट्ठी पत्र लारा लप्पा अड्डी टप्पा एक साल फिर दो साल फिर तीन साल फिर हौली हौली किस आना ते किस जाना रड़ा रप्पा शोर शराबा फिर मुकदमा नार तरीका फिर तलाक ते
0: बस करो जी।

गीत सुन रहे थे तुसी ये फिल्म जट एंड जूलियट दा, और अगला गीत जेहड़े तुहाडे लई असीं लैके आ रहे हाँ, उस गीत नूं गाया होया है मोहम्मद रफ़ी होरां ने। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी और मिन्नू होरां दा गाया है गीत है, और फिल्म पगड़ी संभाल जट्टा चो इस गीत नूं लिया गया है। तो आओ सुनते हैं एक गीत।

प्रोग्राम चल रहा है जी, पंजाबी फिल्म संगीत। और अगला गीत चलाने जा रहे हैं फिल्म बदला जट्टी दा, और इस गीत नु गाया है सरबजीत कौर होरा ने। त्याओ सुनिए ये गीत।

प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी फिल्म संगीत और हुणे तुसी सुनिया है फिल्म नॉटी जट चो लिया गया एक गीत जिन्हों गाया सी जसविंदर नरूला युगराज सिंह ते अदरी जान होरा ने। ते आओ फिर हुण सुनते हैं फिल्म एक होर एहो जी साढ़े कोल कि जिन्हों तुसी हमेशा याद रखते हो और याद रखना भी चाहिए क्योंकि ये फिल्म है ही इतना दी और इहदा जिहड़ा ये गीत गाया है ना ये गीत भी एक खास सिंगर ने गाया है। तुसीं कहोगे किस गीत दी और इन्नी जिहड़ी उह तुसीं भूमिका बन दित्ती है ये सुना भी दिओ हुण जरूर जी जरूर। ये गीत अज दे प्रोग्राम दा आखिरी गीत होएगा और इस गीत नूं शमशाद बेगम और मुहम्मद रफ़ी होरा ने गाया है और इहनूं लिया गया है फिल्म यमला जट चो। तो फिर सुनते हैं अज्ज के प्रोग्राम का आखिरी गीत है।

वडे किया वडे आईया किच कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे, साई कार कमावणी तुर छोड़ी तन पाए, नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए, सो करे जितसे रजाए। वड्डे विस्तार वाले परिपूरक परमात्मा दा कल्याणकारी नाम भी वड्डा है, इतना वड्डा है कि जिसनू बयान नहीं कीता जा सकता। केवल ते केवल उसदे नाम नू जप के, उसदे गुण गायन करके नाम रूपी रंगत हासिल कीती जा सकती है, ते सदीवी खेड़े दी अवस्था विच विचरिया जा सकता है। राग पैरों विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दी स्थापना है। सब ते ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

ते ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। तू मेरी सोभा, तुम संग रचिया, तू मेरी ओट, तू है मेरा तकिया। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी उस बेअंत शोभा दे स्वामी अकाल पुरख प्रभु दे प्रेम रंग विच रते हुए महसूस करदे हुए फरमाउंदे ने कि हे अकाल पुरख परमेश्वर, मैनू तेरा ही आसरा है। अकाल पुरख परमात्मा दी शोभा नित नवी है। ओ निता प्रति बेअंत बख्शिशां करके कुदरत नू नवाजदा है, जिस दा अंत अर्शी देवते भी पौण तो असमर्थ रहे, बस उस तो ता बलिहारे ही जाया जा सकता है। राग कल्याण विच गुर फरमान है, मेरे लालन की सोबा सद नवतन मन रंगी सोबा। सरवण करदे हां भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: मेरे लालन की सोबा, सद नवतन मन रंगी सोबा। इस शब्द का गायन किया सी भाई बलबीर सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखवंत सिंह।
1: कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की सोभा, सद नव तन मन रंगी सोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपहें तरंगी। कौ नानक संतन बलहारै, जो प्रभ के सद संगी। विचार अधीन इह पावन पवित्र शब्द, शहीदां दे सिरताज, बाणी दे बोहित, पंचम पातशाह गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का उचारण किया होया है। ये पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1322 अंग ते कल्याण राग दे अंदर सुभायमान है। कल्याण महला पंजवा दे सिरलेख हेठ दर्ज इस शब्द दे अंदर पंचम पातशाह गुरुदेव जी ने उस महान अकाल पुरख वाहिगुरु दी सोभा दा वर्णन कीता है, जिस वर्गा दूसरा कोई नहीं है। सतगुरु जी ने शब्द दे आरंभ विच वचन कीते हन, मेरे लालन की सोभा, साध नाव तन मन रंगी सोभा रहाओ। शब्द दियां इह आरंभक पंक्तियां जो कि शब्द दियां रहाओ दियां पंक्तियां हन, भाव कि यह शब्द दा केंद्री भाव ते सारी विचार दा तुरा हन। इन्हां विच सच्चे पातशाह हजूर ने सोहणे प्यारे प्रभु दी सच्ची सोभा ते वडियाई कीती है कि मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु दी सोभा

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुणे तुसी सरवन कर रहे सी साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स DRM 864 किलोहर्ट्स FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स फाजिलका FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स कसौली DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6 वजन वाले ने। हुण तो कुछ ही पलां दे इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे हिंदी समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे।

0: आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। सौणी फसलां दे घट्टो घट्ट समर्थन मूल बारे जानकारी देणगे डॉक्टर नरिंदर पाल। कल दे प्रोग्राम दे मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तो अलावा तुहाडे मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:10 ते साडे दिल्ली केंद्र तों एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कीता जाएगा जिस विच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान वीरां नूं संबोधन करनगे। शाम 7:45 ते अंग्रेजी वार्ता होएगी इट पेस टू बी हेल्थ कॉन्शियस। वार्ताकार होंगे डॉक्टर VK खुल्लर। रात 8 प्रोग्राम पेश करेंगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल की गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-23-11-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।
6: पुलिस
7: मिस सीमा।
6: हां जी,
7: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हां
6: क्यों? पर मैं
7: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
7: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
6: इन्ने पैसे?
7: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
6: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
7: ओए,
6: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है। इसलिए घबराओ ना, पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो।
8: हेलो मम्मा।
6: हाय,
9: RBI कहिंदा है
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
10: तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: स्थिति। इतिहासक पठानकोट जोगिंदर नगर नैरोगेज रेल सेवा जो कि पिछले करीब 4 साल तो बंद सी, आज तो मुड़ शुरू हो गई है। इस साल पंजाब अते हिमाचल एक बार फिर रेल संपर्क नाल जुड़ गए ने। रेलवे वालों जारी सोधे हुए शेड्यूल मुताबिक पहली रेलगड्डी सवेरे 5 बजे पठानकोट तो रवाना होएगी अते दोपहर 12 बजे बैजनाथ पापरोला पहुंचेगी। ते दूजी रेल सेवा सवेरे 7 बजे पठानकोट तो रवाना होके दोपहर बाद 1:40 ते बैजनाथ पापरोला पहुंचेगी। वापसी की यात्रा से यह रेलगड्डियां दोपहर बाद 2:15 और दोपहर बाद 3:40 से पठानकोट लिए रवाना होनगियां। अगस्त 2023 में जोगिंदर नगर रेलवे ट्रैक से आए भयानक खड़ा दौरान पंजाब ते हिमाचल की सरहद से स्थित चक्की रेलवे पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया सी, जिस कारण पूरा इलाका कटिया गया सी ते रेल सेवावां पूरी तरह ठप हो गई सन। इस संकट के मद्देनज़र रेलवे मंत्रालय ने जंगी पद्धर से काम किया ते 70 करोड़ रुपए की लागत नाल एक नवा ते आधुनिक रेलवे पुल बनाया, जिस कारण रेल सेवा की मुड़ बहाली हो सकी। गुरदासपुर के सरहदी कस्बे कलानौर के एक निजी अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में आज दोपहर एक धमाका होया। धमाके में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। घटना की जानकारी मिलने से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे ते धमाके के कारणों की जांच शुरू कर दी। SSP गुरदासपुर श्री आदित्य ने दसी है कि एक फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है ते काफी मात्रा में सबूत बरामद किए ने।
1: ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ SPD ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜਲਦ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ।
0: भारत सरकार के खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय वालों चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान तहत खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग जलंधर वालों कृषि विज्ञान केंद्र KVK जलंधर ते केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र CIPMC जलंधर के सहयोग नाल जिला जलंधर के आदमपुर ब्लॉक के पिंड अर्जनवाल विच ब्लॉक पदरी किसान जागरूकता कैंप लाया गया। किसानों नूं सौणी दीआं फसलां विच संतुलित खादां की वरतों अते मिट्टी की परख आधारित खादा दीआं सिफारशां बारे विस्थार नाल जानकारी दित्ती गई। जंगलात अते जीव सुरक्षा विभाग ने मौजूदा ते आउण वालियां पीढ़ियां लई साफ ते हरिया भरिया पंजाब यकीनी बनाउण अते जंगलात हेठले रकबे नूं वधाउण दे उद्देश नाल सारी योजनावां अधीन सूबे दे 23 जिलिआं विचों हरेक जिले विच 6.5 लाख बूटे लाउण दा टीचा मिथे है। औरतों के क्रिकेट विच भारत अते इंग्लैंड दरमियान तीजा ते आखिरी 2020 मैच अज ताउतौन विच खेडिया जाएगा। मैच राती 11 बजे शुरू होएगा। मौसम विभाग वालों कल 3 जून तो 4 जून तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कई थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश नाल गरज चमक ते तेज हवावां चलण दा ऑरेंज अलर्ट जारी कीता गया है। आखिर च खास खबरां। केंद्रीय सेहत मंत्री JP नड्डा दा कहना है कि पंजाब नूं सेहत समेत होर खेतरां विच भी सब तो वध तरजीह दित्ती जा रही है। मुख्यमंत्री मामा धियां सत्कार योजना तहत 1 जुलाई तो पंजाब दीआं 52 लाख औरतों नूं 1,000 रुपए अते दलित औरतों नूं 1,500 रुपए की हर महीने की माली सहायता मिलेगी। पंजाब के नवी ते नवियाउणयोग ऊर्जा स्रोत मंत्री वालों सूबे दीआं मुख इमारतां ते 2 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्टां नूं लाउण दा ऐलान। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम के 6:30 हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज

0: जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ
0: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी, इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है, उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की, वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए। तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है। हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियाँ पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने, इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से। वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए, और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करें।

0: लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ना करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले, यानी एमएसपी के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपये क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है, तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। जी, सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर हियर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो। सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price.
1: Right.
2: And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that we revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem.
1: Yes.
2: Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% अकेले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत

0: है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं, 2, 4, 5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। अब समझिए कि हमें लगता है कि 60 से 70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हज़ार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हज़ार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हज़ार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, and this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce, in that whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water, that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments, they have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our

0: farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture and productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa unhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishwa hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports. $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनका सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 170,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है. और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण. प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है.
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे विच एक बार फिर तो आप सब दा बहुत बहुत स्वागत। जिंदगी वक्त दे छोटे छोटे पलां दे नाल जुड़ के बनी हुई है, लेकिन किसी दे कोल किन्ना वक्त है है कोई नहीं जानता। साढ़े अपने कोल किन्ना वक्त है यह भी नहीं असी जानते। तो इस करके हर पल नूं ना कहिंदे कि जिंदगी समझ के ना जी लिया करिए। एक बारी ना एक फकीर दे कोल एक इंसान गया। उसने उसनू फकीर नूं पुछया कि तुहानू इन्ने साल हो गए तपस्या करदे साधना करदे, तां की तुसी सिख्या, की तुहाडी साधना है या की तुहाडी तपस्या दा फल है। तां उसने फकीर ने जवाब दिता, उसने कहा कि मेरी साधना सिर्फ यही है कि जदों मैनू भुख लगती है ना तो मैं खाना खांदा वां, जदों मैनू नींद आती है तो मैं सौ जाना वां। उस आदमी ने कहा कि यह भी कोई साधना हुई, यह भी कोई तपस्या हुई कि यह काम तो असी सारे ही करते हैं कि जो सानू भुख लगती है असी खा लें, जो सानू नींद आती है असी सौ जाने। लेकिन फकीर ने कहा नहीं, तुसी जो खाना खाते हो ना तां भी तुसी हज़ार काम नाल कर रहे होंदे हो, या तो तुसी किसी ना किसी काम दे विच उलझे होंदे हो। जिदा असी की करते हैं कि अक्सर असी घरां दे विच देखिया खाना खान बैठते हैं तो TV देखन लग जाने या मोबाइल देखन लग जाने या किसी चीज़ वाल कोई अखबार ही पढ़न लग जाता है या किसी मतलब मोबाइल तो आप छड़दे ही नहीं कि खाना खाने दे टाइम भी अजकल आप देखिया कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों के भी मावं ने मोबाइल फड़ाए होंगे ने कि मोबाइल देखता देखता घट्टो घट खाना तो खा ले, क्योंकि बच्चे जड़े ने वह खाने तो भजदे ने, उन्होंने स्वाद नहीं लगदियाँ ये चीज़ा, तो जो उन्होंने मोबाइल का लालच दिता जाता है तो इस करके वह बैठ जाते हैं, नाले मोबाइल देखी जाएंगे नाले रोटी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ 9:15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद

0: कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी

0: भी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन

0: राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री

सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को सीबीएसई में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अच्छा
1: फिर मैं लेग स्पिन सीटना शुरू करने लग गया अपनी।
0: अच्छा
1: शेन वॉन का ट्यूटोरियल देखा, ओदी वीडियो हल्ले भी पई है।
0: अच्छा
1: कि किद्दा फड़नी है बॉल, फिर मैं वो देख के ग्राउंड च
0: अच्छा
1: दोपहरे भजन तो बाद डेढ़ घंटा उसी गर्मी च प्रैक्टिस करता सी वो स्पॉट बॉलिंग दी। कोई नहीं हैगा, सिर्फ मैं एक स्टंप लाना ही।
0: अच्छा।
1: नेट च मैनू याद है विच वाला नेट।
0: अच्छा।
1: रंगी लाल जी जेड़े सीगे साडे ग्राउंड में अंदर हल्ले भी हैगे ओ।
0: जी,
1: मैं जदों भी जाना मैं उन्होंने हाथ मतलब पैर छूना, क्योंकि उन्होंने जो विकेट बनाए साडे लिए उस करके मैं खेडिया, अज भी उत्थे खेड रहे, इसलिए उन्होंने मैं जरूर थैंक्स करूंगा। कभी हल्ले भी जाना पैर छूना, तो उन्होंने कोई भी मेरे वालों सेवा होंगी मैं जरूर करता। वो विकेट मेरे लिए एक रख देंगे सी। ग्राउंड आन तो पहला मैं एक डेढ़ घंटा भज के थोड़ा पानी पूनी पीता, थोड़ा वो खादा, रेस्ट की थले छोटा जहा ना उत्थे हैगा हले भी एक वृक्ष हैगा उत्थे।
0: अच्छा,
1: पुराना
0: अच्छा,
1: पेड़ हैगा ओदे थले रेस्ट करदा सी
0: जी।
1: थोड़ा पसीना सुखिया, उस तो बाद फिर आके फिर मैं दोबारा बॉल पाना शुरू कर दे 10 to 15 ओवर। उस तो बाद एक पीसीए का अलग नैट हुंदा सी।
0: अच्छा।
1: ते ओदे चे फिर मैं बॉल पांदा सी, ओ ओवल बॉलर बॉल पांदे सीगे जेड़े एलीट मतलब जेड़े डिस्ट्रिक्ट खेडदे पए।
0: जी जी।
1: ते मैं हल्ले खेडिया नहीं सी, बट क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा सी, बॉल वधिया पांदा सी, वधिया वधिया बैट्समैन उन्नू खेडन आंदे सी, तो कहंदे यार ये वधिया बॉलर हैगा इन्नू साडे नेट च ले आओ।
0: अच्छा, रखो तुसीं मेहनत कीती और लेग स्पिन तुहाडा पक्का यकीन बन गया भी तुसीं लेग स्पिनर ही बणोगे। प्रैक्टिस कीती ओदे च तुहाडी परफेक्शन आई। अच्छा, प्रैक्टिस करना एक गल हुंदी है, मैच टैंपरामेंट एक गल है। जो तुसी मैच में 22 कदमों के बॉल पाते हो, बैट्समैन तुहानू डोमीनेट करन की कोशिश करता है, उदों थोड़ा माहौल तुहाडा माइंडसैट वक्खरा हुंदा है। ये दसो कि लेग स्पिन की प्रैक्टिस करन तो बाद मैचेस किदां खेडने शुरू किए और उहदे च तुहाडा तजर्बा किदां दा रहा?
1: मैचेस मैं सब तो पहला जलंधर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसीएशन उत्थे जिहड़े साडे प्रैक्टिस मैच हुंदे सी।
0: जी जी।
1: उत्थे बड़े स्टेट लैवल दे प्लेयर आंदे सी, चंगे चंगे जिहड़े खेडे होए, रणजी ट्रॉफी खेडे होए।
0: जी जी।
1: ते उन्हां नू बॉल पानी ते उन्हां सामने की है कि उस वक्त टप्पा इन्ना सैट नहीं हुंदा सी, ते नर्व्स आ जांदी सी, प्रेशर आंदा सी कि भई हुण कित्थे उपर थले हो जांदे सी बॉल। पर हौले हौले करके मेरे सामने तुसीं जिन्ना ज्यादा मैच खेडदे हो तुहाडा मैच टैंपरामेंट ऑटोमैटिक बन जांदा
0: है।
1: ते डिफरेंट सिचुएशन जब तुसीं बॉल पाना सीख जाने हो
0: जी,
1: ते तुसीं फिर पक्के हो जाने हो
0: जी। और रघु, तुसीं मैच खेडदे आ फिर ये भी महसूस किया होगा कि कल्ली लेग स्पिन ना बॉल ना गल नहीं बननी, तुहानू गुगली भी डिवेलप करनी पएगी, तुहानू फ्लिपर भी डिवेलप करने पैणगे। सो ये लेग स्पिन नाल जुड़ियां जिहड़ियां वैरायटीज सी, इन्हां नू डिवेलप करन च किन्नी मेहनत करनी पई?
1: भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे सामने। मैं तुम्हें दसा, जब मैं डोमैसटिक 2017 च रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया पंजाब तो।
0: अच्छा।
1: ते ओदे विच मैं मोस्टली लेग स्पिन ते स्लाइडर जिहड़ा हुंदा स्ट्रेटर वन
0: जी,
1: दो बॉल सिटदा सी।
0: अच्छा।
1: गुगली सीगी, पर गुगली बहुत स्लो सीगी एयर च।
0: अच्छा।
1: फिर मैनू याद है मेरी एक्चुअल गुगली कदों ठीक हुई कि जदों मैं उत्थे गया इंग्लैंड गया काउंटी खेडन।
0: अच्छा।
1: ते उत्थे जाके भी मैं गुगली घट सिटदा सी।
0: अच्छा।
1: इमरान ताहिर, मेरे को हले भी वीडियो पई है ताहिर वाली, उन्होंने मैनू घट तो घट 40-45 मिंट दिते सी उधर।
0: अच्छा, जेड़े साउथ अफ्रीका वालों खेल।
1: हाँ जी,
0: लेग स्पिन गेंद।
1: लेग स्पिन
0: जी।
1: उन्होंने मैनू दस्या कि भाई इदां तू गुगली सिट सकदा, तेरी स्पीड वध जाएगी।
0: अच्छा।
1: वो मैं थोड़ा एक दो चीज़ उन्होंने तो लिती, तो उस तो बाद मैं अपने एक्शन च लै के आया, क्योंकि इंग्लैंड च तुसी हफ्ते च एक या दो मैच खेडते हो, बाकी 6-5 दिन वो फ्री होंगे। मैं की करता सी, बॉला लै लैंदा सी उन्होंने तो।
0: अच्छा।
1: भाई मैनू 40 बॉला दे दो तुसी।
0: अच्छा।
1: एक मैनू स्क्वेयर टर्फ दे देने सी विच दा।
0: अच्छा।
1: मैं उत्थे जाके डेढ़ घंटा बॉल पाना सी, फिर बॉल कलेक्ट करता सी, दूजे एंड तो बॉल पाना सी।
0: अच्छा।
1: इदा करके टोटल 10-15 ओवर सिटदा सी। फिर उत्थे मेरी गुगली जिहड़ी स्पीड चंगी हुई, फिर मैनू कॉन्फिडेंस आया, उस तो बाद फिर मैं हौले हौले करके इनू मैच भी पाना शुरू करता
0: जी। इंग्लैंड च तुसी काउंटी खेडे और उत्थे वख-वख मुल्कां दे बल्लेबाज होणगे और वख-वख तरह के मैचेस होणगे, उत्थे खेडना तुहाडी लेग स्पिन गेंदबाजी लई किन्ना फायदेमंद रहा, किन्ना सिख्या इंग्लैंड च गेंदबाजी करके?
1: कंडीशनस बहुत टफ सी उधर, क्योंकि पहली गल जदों भी ठंड ज़्यादा हो जाती है रिस स्पिनर लिए प्रॉब्लम होंगी बॉल नू ग्रिप करना
0: जी,
1: तो उस तो बाद जदों बॉल पाँदा है तो हाथ की रिस्ट क्योंकि ठंडी रहती है तुहाडे हाथ चो स्लिप बड़ी छेती होंगी है, तो उपरों उत्थे वैट कंडीशनस है बहुत।
0: अच्छा।
1: गिला, तो मैं गिले बॉल नाल बॉल पाना उत्थे सीखा।
0: अच्छा।
1: ईवन इनकेस आईपीएल च भी तुसी देखोगे ड्यू फैक्टर आ जाता है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो मैनू ड्यू नाल प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं उत्थे सीख चुकिया सी पहला इंग्लैंड च।
0: अच्छा।
1: कि तुसी गिले बॉल नाल बॉल किद्दां पाना है।
0: अच्छा।
1: केड़ा लेंथ पाना है, किथे पाना है।
0: अच्छा।
1: तो वो चीज़ मैं उत्थे सीखी।
0: रघु, एक तो आप अच्छा खेड रहे होइए, अच्छी बॉल पा रहे होइए, सानू अग्गों रस्ता मिले तो साडा हौसला दूणा हो जाता, पर तुहाडे करियर च ना कुछ बैड लक यह रही कि जिस वेले तुसी अच्छी बॉलिंग कर रहे सी तुहाडा कॉम्पीटिशन बहुत ज़्यादा सी, सो तुहानू सही तरह के नाल मौका नहीं सी मिल पाउंदा, ये जिहड़ी चीज़ सी ये तुहानू किसे तरह के नाल बैकफुट ते करदी सी या हौसला तोड़दी सी?
1: हौसला देखो बहुत टुटदा है, मतलब मैनू याद है कि मतलब जब तुसी पूरा साल मेहनत करते हो
0: जी,
1: फिर तुसी 15 दी टीम च नहीं आते
0: जी,
1: फिर तुहानू फिर दोबारा

0: अगले साल देखना पड़ता है कि मैं
1: जी
0: अगले साल फिर आऊँगा, मैं फिर विकटा कर दूंगा।
1: नवे सिरे शुरू करूँ।
0: हाँ जी, बट आ चीज़ मतलब तुस मैं 2017 च डेब्यू भी किया रणजी ट्रॉफी का, फिर
1: जी
0: भी मैं अपनी जगह बना ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुम देखो जब मैं डेब्यू भी किया तो सारे इंडिया प्लेयर ही सके उस,
1: जी बिल्कुल
0: तो मैं ही नहीं खेडिया सी कल्ला इंडिया।
1: जी
0: तो मतलब वो सी सिस्टम होंगे कि जब तुम अपनी जगह बनानी पैंती है ना, दैन यू हैव टू प्रूव कि तुम्हारी की वैल्यू हैगी है टीम च।
1: जी
0: जे तुम नहीं बना पाते हो तो फिर तुम बैकफुट पर आ ही जाते हो।
1: जी
0: बट फिर वो चीज़ में फिर दोबारा तुम रीस्टार्ट करना उस सिर्फ तो काफ़ी डिफिकल्ट सीगा। मतलब मैं हल्ले सोचता मैनू वो देख के, मतलब जो मैनू फीलिंग आ रही है,
1: जी
0: मतलब तुम तो सारे ने पर्ची देखी है 15 साल वाली, बट वो
1: जी
0: जो 15 साल मेरे हल्ले भी मैनू एक एक सेकेंड मैनू याद आता है कि किदा निकलता है एक
1: जी
0: प्लेयर
1: जी
0: का।
1: वाकई संघर्ष करना वाकई बड़ा मुश्किल हुंदा, पर तुहाडे लई सब तो वधिया गल ये रही कि तुसीं मेहनत करनी नहीं छड्डी और गेम नू सिखना नहीं छड्डिया। इसे करके तुसीं वक्ख-वक्ख थावां ते जाके लीग्स खेडदे रहे। चेन्नई विच वी तुसीं काफ़ी देर लीग खेडी। चेन्नई च जिहड़ी तुसीं क्रिकेट खेडी

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सरगम। सरगम दा अगला नगमा फिल्म दुनिया ना माने तो आवाज़ा लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी दियाँ, गीत दे बोल राजेंद्र कृष्ण दे ते संगीत मदन मोहन दा।

ते आओ फिर असी भी चलिए सरगम दे अगले गाने वल, जो कि है फिल्म बात एक रात की। तो आवाज़ है हेमंत कुमार दी, गीत बोल मजरू सुल्तानपुरी दे, ते संगीत एसडी बर्मन दा।

फिल्म काला बाजार तो अगला गीत आवाज़ मोहम्मद रफी दी शैलेंद्र दे बोल ते संगीत एस डी बर्मन दा।

सरगम दा अगला नगमा मुहम्मद रफ़ी ते आशरा भोंसले दी आवाज़ां च फिल्म हमजोली तो, गीत बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

जी हाँ, सरगम दा आखिरी नगमा फिल्म जंगली तो आवाज़ा लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफ़ी दियाँ, गीत दे बोल हसरत जयपुरी दे ते संगीत शंकर जयकिशन दा। ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसे ही गीत दे नाल अज दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म होएगा जी। शब्बा खैर।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब

बिल्कुल जी, इतना गुस्से गुस्से रहना दस क्यों सजना की तन जगह गुरु आसमान साफ दी आवाज़ से फिर प्रोग्राम चले जी सो गाते मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल बनया हुआ साड़ा नंबर है जी 0181 4342 171 यानी कि 0181 2342 171। यह नंबर डायल करके तुम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो तो कर सकते हो जी अपने पसंदीदा गीतों फरमाइशों के नाल गलत। तो इस अलावा जिमें कि मैं पता ही है बहुत सारे दोस्तों के फोन के व्हाट्सएप नंबर जरा ऑलरेडी सेव है, पर फिर भी असी नंबर जरा जरूर दोबारा दसना है। तो साड़ा नंबर है जी 9465536077 यानी कि 9465536077। सो इस नंबर के उपर तुम व्हाट्सएप मैसेज के राही फरमाइश भेज सकते हो जोड़ा भी गीत सुनना चाहते हो। सो असी उस फरमाइश में भी बिल्कुल जरूर पूरी करा। सो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी बाजवा कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम चंद जी वालों। इन्हों के नाल ने जी अनमोल तो दीपक और सतेंद्र सरताज साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है। सो बिल्कुल जी इन्हों की फरमाइश आप पूरी करते हैं। तो अगला एक मैसेज होर साढ़े तक पहुँचा है जी आया सरहिंदी बाजार पटियाला तो भेजा है प्रेम कुमार रहेजा जी ने। इन्हों के नाल जी कांता राणी चरण रहेजा डैनी नीतू ज्योत सजनी

सुना लीजिए संगीता रानी जिंदल, पप्पू स्माइल खुश दिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुश दिल, ते पूरा ही खुश दिल परिवार। तो इस नाल नाल ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा होया जी। मैसेज देखते हैं कितों आया। ये मैसेज साढ़े को पहुँचा है पिंड डंगेड़िया तो, जिला फतेहगढ़ साहिब तो भेजा है गुरप्रीत सिंह बिलिंग जी ने। इन्हों के नाल ने जी वीर सिकंदर सिंह बिलिंग। एक मैसेज होर पहुँचा है जी। ये मैसेज देखते हैं कितों आया। सो ये मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी जगमोहन सिंह जी का, जगमोहन सिंह अरनेजा जी का, श्री गंगानगर तो इन्होंने मैसेज किया है। तो एक मैसेज होर है जी, इस मैसेज में भी आप शामिल कर लेते हैं। सो ये मैसेज साढ़े तई पहुँचा है जी पिंड शाजली तो, भेजा है सुखबीर सिंह जी ने। इन्होंने नाले कोमलप्रीत कौर तो रोशनप्रीत सिंह। सो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश तो सुनते हैं प्यारा जहा गीत।

सुपर का जो लुक लुक रोवांगी गीत इंजॉय कर रहे थे, फिर उसका साफ की आवाज़ थे, फिर इतने प्रोग्राम चल रहे थे। सो गात अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे है जी, डेनवर US तो मोहन चंद्र जी का, और गीत इंजॉय करना चाहते हैं जी, चंडीगढ़ रहने वाली है। तो बिल्कुल जी, असं इन्हों की फरमाइश जी जरूर पूरी करा। सो एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचे है जी, मैसेज आया है चकला बाजार समाणा शहर तो, भेजा है पूरा जहा खुश दिल जी ने।

मगन मने मैं चितवा वासा नैनो तार तुहारी। सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

अच्छी प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। ए बोल भगत रविदास जी द्वारा उचारित ने, जो अकाल पुरख नाल भगत जना दी प्रीत दे लखायक ने। दरअसल अकाल पुरख प्रभु पति नाल प्रीत उत्तम प्रीत है, प्यारी प्रीत है। जिड़े प्राणी सच्ची प्रीत विच विश्वास भरोसा रखते हैं, वो मन ही मन विच उस प्रभु दे दर्शन दीदार दी आस रखते हुए नैणा विच प्रभु दे दर्शना दी तांग रखते ने। प्रिय की प्रीत प्यारी,

0: प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरबंस सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवों आसा, नैनो तार तुहारी। रहाओ ओए दिन पहर मूरत पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खुले कपट तपट बुझ तृष्णा, जीमो पेख दरसारी। कौन सो जतन उपाओ किनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अभिमान मोह तज नानक, संतै संग उधारी। ए पाक बचन धन श्री गुरु अर्जन देव जी दे राग के दारा विच उच्चारण कीते हुए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 1120 उपर सुभाए मान।

0: अध्याय गुरु वाक है, ज्यों मछली बिन पानीए क्यों जीवन पावै, बूंद विहूणा चातर को क्यों कर तृप्तावै, नाद कुरंके बेदया सनमुख उठ धावै, भवर लोभी कुसम बासका मिलिया बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। विचाराधीन शब्द द्वारा गुरुदेव फरमाउंदे हन कि मेरे मन नूं प्यारे प्रभु जी की प्रीत खिच पाउंदी रहिंदी है, भाव मेरे मन विच वाहिगुरु जी दे लई हमेशा प्रीत बनी रहिंदी है। जिवें सच्ची प्रीत दे कारण प्रभु जी मैं अपने मन विच ही मस्त रह के मैं तेरे दीदार दियां आसां चितवदा रहिंदा हां, मेरियां अखां विच तेरे दर्शनां दी तांग भरी उडीक बनी रहिंदी है। इस प्रथाए गुरुवाक है, मगन मन मैं चितवों आसा नैनो तार तुहारी रहाओ। शब्द दे पहले पद विच ही गुरुदेव फरमाउंदे हन कि ओ दिन, ओ पहर, ओ मुहूर्त, ओ पल बहुत ही भागां वाले हन। ओ घड़ी बड़ी भागां वाली हुंदी है जदों मनुख दे अंदरों माया दी तृष्णा मिट जांदी है। इसे तृष्णा कारण जो मन दे किवाड़ बंद हो चुके सन ओ दरवाजे झट पट खुल जांदे हन अते प्रभु जी दा दर्शन करदे ही मेरे अंदर आत्मक जीवन पैदा हुंदा है। इस पर थाए गुरुवाक है, ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खुले कपट तपट बुझ तृष्णा जीवो पेख दर सारी। शब्द अखीर विच धन श्री गुरु अर्जन देव जी फुरमाउंदे हन, कौन सो जतन उपाओ किनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अभिमान मोह तज नानक संतह संग उधारी। उस सर्व व्यापी अलख पार ब्रह्म परमेश्वर दी प्रीत दी कथा अकथ है जो बयान नहीं कीती जा सकती। धन श्री गुरु अर्जन देव जी बचन करदे हन कि मैं ओ केड़ा यतन दसां, ओ केड़ा हीला वसीला दरसावां, मैं ओ केड़ी सेवा दी विचार विचारां जिस उद्दम दे सदका प्यारे प्रभु जी दा दर्शन हो सकदा है। हे दुनिया दे लोको, इतना ही कहांगा कि उस प्यारे प्रभु जी दे संत जना दी संगत विच रह के माण अहंकार मोह दा त्याग करके ही पार उतारा हो सकदा है ते प्रभु प्यारे दी प्रीत ही उस प्यारे प्रभु जी नाल पाई सच्ची प्रीत ही उस दे मिलाप दा कारण बनदी है।
1: प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवाओ आसा नैनो तार तुहारी। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जसबीर सिंह। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे ज ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहा कहां प्रभ तू वर्तनता, कर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरबाणी अनुसार अचिंत रहण दा मंत्र अचिंत प्रभु आप ही दर्शा सकता है। जिसने अचिंत प्रभु दे नाल प्रेम स्थापित कर लिया है उसका नाम हिरदे विच वसा लिया है, अचिंत प्रभु उसका राखा बन जाता है। अचिंते नाल प्रीत रखता होया इंसान अचिंत अवस्था का धारनी हो जाता है। सुनदे हां भगवान सिंह जौहल होरां पासों वार्ता, गुरबाणी विच अचिंत का संकल्प।
2: मनुखी जीवन विच उस अचिंत प्रभु नूं बुझण लई जीवन समर्पित करना पैंदा है। इस कार्य लई सिमरन साधना विवेक बुद्धि अते मन निर्मल करन लई सख्त अभ्यास की लोड़ है। गुर शब्द की कमाई की जरूरत है। यह दात उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा दृष्टि नाल ही प्राप्त हो सकती है। अजिही समर्पण भावना वाले जग्यासु नूं दुखां तों छुटकारा दवा के सुख प्रदान करन वाला वह अकाल पुरख वाहिगुरु है। वह चिंत प्रभु उस दीआं चिंतावां ते होमे नूं दूर करके आप ही रखवाला बन जाता है। राग गौड़ी विच बाणी दे बोहित धन गुरु अर्जन देव जी का हुक्म है, जिस प्रभ राख है तिस ना ही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार। हुण अपनी सोच ते विचार शक्ति गुरु दे अधीन करन तों पिछों जिहड़ी नवीं आत्मक रौं मन विच चलेगी उस नाल जग्यासु दी सीमत

नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: पुरख भेट्यो अविनाशी, आदले भगत जित लग तरे, सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरे, तें हर प्रेम पदार्थ पायो।
1: प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट्टे, सतगुर शब्द यथा अमें तारा रस गुट्टे।

0: जगत उदारण नव निदान भगतें पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पै सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो
1: सेज सदा सहज छावान संतोख सराय चो सदा सील

सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत हो जियो, तारण तरण खेण मात्र जाको दृष्ट तार, शब्द रिद विचार काम क्रोध खो वह जियो, जियन सबन दाता गम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सो वह जियो, जाको देखत दृद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो वह जियो, सत गुर नाम एकले मन जपे दृढ़।

सतगुरु पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक दिवदाई है पुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अक

जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट ने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पोड़।

जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए प्रवाह नाई किसे केरी बाज सचे ना दरवाज़ ऊपर खर्च।